0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: सिटी एफएम 89.
5: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews, and so much more. Non-stop content for you.
6: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to

0: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Trending today.
3: Apple has officially rolled out its iOS 27 public beta, introducing a dedicated standalone Siri app directly on the iPhone home screen. The new interface functions like modern AI platforms, featuring cross-device iCloud continuity, chat history tracking, and direct file uploads.
4: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: Follow us on Instagram at cityfm89
6: for your infinite scrolling wheel fix.
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
8: City FM 89.
9: We're playing.
10: Your songs.
11: The first time at the disco.
12: When you love someone, it's natural, not demanding.
11: Holiday with friends. Retro cinema.
13: Hey, where did we go? Days when the rains came.
11: Music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
14: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
15: City FM 89.
16: You're listening to
17: Non-Stop Hits.
18: No talk.
19: Just you
18: and the music.
19: Back to back
18: starts now.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
1: City FM 89.
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
1: यू आर लिसनिंग टू
0: नॉन स्टॉप हिट्स।

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 4 p.m.
4: This time check is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: You got me going crazy.
7: Trending today.
8: Apple has officially rolled out its iOS 27 public beta, introducing a dedicated standalone Siri app directly on the iPhone home screen. The new interface functions like modern AI platforms, featuring cross-device iCloud continuity, chat history tracking, and direct file uploads.
5: City FM 89, we're playing the song.
9: कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
0: वी आर
7: सिटी एफएम 89
0: यू आर लिसनिंग टू
2: नॉनस्टॉप हिट्स
10: नो टॉक जस्ट यू एंड द म्यूजिक
11: बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले विद इन जस्ट 3 days. आज ही बुक करें अपना आइल्सॉन कंप्यूटर. AEO पाकिस्तान, पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड आइल्स टेस्ट सेंटर. Book now at www.aeo.com.pk.
3: You're listening to City FM 89.
5: We're playing your song.
6: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
7: Hey, where did we go? Days when the rains came.
6: Music that speaks to you. Reconnect your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
8: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 6 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Trending today.
5: Apple has officially rolled out its iOS 27 public beta, introducing a dedicated standalone Siri app directly on the iPhone home screen. The new interface functions like modern AI platforms, featuring cross-device iCloud continuity, chat history tracking, and direct file uploads.
6: City FM 89.
7: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
8: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू.
9: बंद करो ना ढक्कन.
10: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ.
11: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
12: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों. बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो तो जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैस कैश.
4: सिटी FM 89.
13: यू आर लिसनिंग टू
4: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक.
14: That was Tony Braxton with Dance, and from that dance to yet another dance, here's Dave and Thames with Rain Dance. See you like that.

0: your song.
1: Only on City FM 89. It's 7 p.m.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: City FM
4: 89.
3: Coming up next.
4: Retro 89.
5: City FM 89. We're playing the song.
6: Trending today.
7: Apple has officially rolled out its iOS 27 public beta, introducing a dedicated standalone Siri app directly on the iPhone home screen. The new interface functions like modern AI platforms, featuring cross-device iCloud continuity, chat history tracking, and direct file uploads.
8: We are
9: City FM 89.
10: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
11: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, no worries.
12: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. With Yellow by Jazz Cash.
11: Hire kar naya No Frost IoT Refrigerator jiska multi airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost no worries
3: City FM 89 Sound

0: prolonged your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 7:30 p.m.
3: City FM
1: 89.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
2: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग व्हील फिक्स.
6: cityfm89.
7: वी आर ऑल लुकिंग टू मैक्सिमाइज आवर पोटेंशियल. Skip the drugs and focus on what truly matters. Channel your energy into your passions, your career, and make meaningful connections. Stay sharp, stay healthy, and stay ahead. Choose productivity. Choose a better life. Stay drug-free.
8: City FM 89. We are playing your song.
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Share bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No Frost, no worries.
4: तैयार हो अपनी जिंदगी का अगला कदम लेने के लिए? AEO पाकिस्तान लाया है आइल्सॉन कंप्यूटर, जहां टेस्टिंग का हर पल होता है. कंफर्टेबल, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री. डेली अवेलेबिलिटी, नेशन वाइड सेंटर्स और रिजल्ट्स भी मिले within just 3 days. Aaj hi book kare apna IELTS on computer. AEO Pakistan, Pakistan's most trusted IELTS test center. Book now at www.aeo.com.pk.
5: Ab apni pasand ki shopping karte hue bill ki tension kyun? Bas apne favorite store par jao aur yellow QR scan karke 3 easy installments mein apna bill clear karo. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैस कैश.
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग.
7: एवरीबॉडी गो.
1: You're listening to
8: Retro 89 with Amir Nasir.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
4: Trending today.
5: Apple has officially rolled out its iOS 27 public beta, introducing a dedicated standalone Siri app directly on the iPhone home screen. The new interface functions like modern AI platforms, featuring cross-device iCloud continuity, chat history tracking, and direct file uploads.
1: City
0: FM
1: 89.
0: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: Our TikTok will have a scrolling for days.
6: Follow us at CityFM89 on TikTok.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना.
8: City FM 89. We're playing your song.
9: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश.
8: साउंड ऑफ योर सिटी, सिटी FM 89.
1: यू आर लिसनिंग टू
10: रेट्रो 89 विद अमीन नसीर.

0: We will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 p.m. City FM 89.
3: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
4: We're playing your song.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैस कैश है ना.
6: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. With Yellow by Jazz Cash.
8: We're playing your song.
9: City FM 89 is now live on WhatsApp.
10: It's so easy.
11: 0314-289-8989.
12: Save, text, voice note or call to get your song played.
13: And talk to your favorite artists.
14: Only on City FM 89.
8: We're playing your song.
15: When I grow up, I want to be strong.
16: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
15: I want to learn big things.
16: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A and zinc, affecting how they grow, think and learn.
15: I want to be the fastest.
16: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
15: I want to grow up like everyone else.
16: Because every child deserves a chance to grow, learn and thrive. Act now for the foundations of our nation.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: फॉलो अस एट CityFM89 ऑन TikTok.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद ये लो बाय जैस कैश.
5: CityFM89.
6: Attention, the standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.
8: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
9: Join ABD as he takes over the streets.
8: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
7: your evenings just got an upgrade.
9: The rush hour with ABD.
8: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
7: Tune in or get left behind.
1: City FM 89.
10: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Retro 89 with Amir Nasir.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: Text pay karna ab hua aasaan. Abhi JazzCash app download karein aur apna text pay karke lucky draw mein shamil ho jayein aur jeetein electric scooter. Aasaan payments aur exciting rewards ke liye. JazzCash hai na.
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. With Yellow by JazzCash.
7: Nine.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 9:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए. जैस कैश है ना.
0: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews and so much more. Non-stop content for you.
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. With Yellow by Jazz Cash.
6: We're playing your song.
7: You know the city, but do you know what's actually happening in it? From hidden hotspots to the latest trends and go-to events everyone is talking about, and a few that they aren't. I'm Anika, and I'm going behind the scenes to find the heartbeat of your streets. Whether you're looking for your next weekend plan or just want to stay in the loop, I've got you covered. Come and join me on What's Happening in Your City every Friday at 4 p.m. only on City FM 89.
8: City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
3: Our TikTok will have you scrolling for days.
4: Follow us at CityFM89 on TikTok.
5: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बस अभी Jazz Cash ऐप से Jazz V5 Fantastic Bundle लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए। Jazz Cash है ना?
6: City FM 89.
1: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
1: City
3: FM
1: 89.
4: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
3: City FM 89, we're playing your song.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
6: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
7: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग व्हील फिक्स.
8: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश.
1: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No talk,
11: just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.